0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा, खुश रहने का जज्बा।
2: रेडियो अमन नेटवर्क,
3: पैगाम अमन है,
4: प्यार की एक दुनिया लेकर,
5: मोहब्बत समेट कर,
6: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
5: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: लिंक रोड वाणी मानकई अड्डे की सुमंग समृद्ध कॉस्मेटिक आसमानी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स ठूल तसल फारलत मौजूद दिया बाकी सुमंग आवास का दावा की बाजेवल के खार बाजार के सुखूरी पशत बाजार के सुखूरी सालारजू के सुखूरी लोयसम बाजार के सुखूरी चारबागों के फाटक की नावगई की रागगानो बाजार की इनायत के लिए की अड़ंग तोहिदाबाद की असबन बाजार की अंबार की बुनेर की मोहम्मद निजी बाजेवड़ी जिनसी खाख बाजार से माशाल्लाह सुमंग तमाम आसमानी प्रोडक्ट्स आसो पर इंतजार देखा जी हटाई मुख्तसर दे जी इंशाल्लाह कभी वफा सागानो वफाओ का जुन वफाओ का तसबाब जोंदी बारिश सबाब खुरी प्रोग्राम सरसा सुबह खिदमत की हाजिरी को तर अकीदों पर इकबल रो डॉक्टर इसरार जानला इजाजत पर कई दलू अल्लाह पामान आसमानी कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान जिंदाबाद
1: रेडियो अमन नेटवर्क पैगाम अमन है।

आस का कुजबांडी तरह सीन वाले की आता मामद मिनियारी सेंटर उगई रोड कुजबांडा त्वयब जनरल स्टोर नजद कुजबांडा पेट्रोल पंप अनवर कॉस्मेटिक्स हुसैनी मार्केट दुकान नंबर एक शेर मामद सरा मलकाल मेडिकल स्टोर लेडीज मार्केट मेरा बटू कॉस्मेटिक्स लेडीज मार्केट मेरा आसिफ कॉस्मेटिक्स मेरा सदाम शॉपिंग सेंटर लेडीज मार्केट मेरा आबिद शाह कॉस्मेटिक्स लेडीज मार्केट मेरा सदीक एंड बिरादर्स शलखे मार्केट इंसाफ जनरल स्टोर बांडिगु कारी सनाउल्ला मेन बाजार बांडिगु की हम दाता था मेलावी देशी ग्रानुरुदिन को जमंगा गसीरा पी बात आता पा अलई की हम मेलावी की अलई के बाद जमंगा एड्रेस याद साथी लेडीज मार्केट गली नंबर दो दुनियत खान सरा सदर शाह दुकान नंबर एक नंबर दो दारंगी अलई करक बाजार के गुलटी सेंटर करक बाजार अलई अल्तनोम तदा तरलासा कवलेशी जमंगदागा सिरप बताता सलमान मेडिकल स्टोर डीएचके बडग्राम की हम मिलावी की कमिश्नर मंगरे के शाहिद खान सरा दाता तो हम मिलावी देशी तरन जगदेश की दाता था हिजर हयात जनरल स्टोर की हम मिलावी देशी ग्रांड रोडन को जमंग प्रोग्राम वक्त खत्म शवे दे सासुन भाई इजाजत वाड़ू तर सभा पूर्व अखबर इजाजत वर कई असलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।

0: ऑयली या सेंसिटिव, बस लगाएं और खुद देखें जादुई फर्क। नो टेंशन गोल्ड ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती, नरमी और चमक का सुनहरी इम्तिजाज। नो टेंशन, जस्ट गोल्डन परफेक्शन।
1: आईने में वो देख रहे थे बहारे हुस्न, आया मेरा ख्याल तो शर्मा के रह गए।
2: हमारे हसीन चेहरे का सीक्रेट नो टेंशन ब्यूटी क्रीम,
1: 5 डेज ब्यूटी प्लान के साथ लाए इतना निखार जो रहे हमेशा बरकरार बिना किसी साइड इफेक्ट के।
2: नो टेंशन ब्यूटी क्रीम में मौजूद फ्रूट एक्सट्रैक्ट जो आपकी स्किन को करे बिल्कुल साफ, जल्द को बनाए मुलायम और चमकदार।
1: 5 दिन में शर्तिया रंग गोरा करे कि यकीन करना मुश्किल हो जाए। अब आपका क्या ख्याल है?
2: आप नो टेंशन ब्यूटी क्रीम हर अच्छे मेडिकल स्टोर, कॉस्मेटिक स्टोर से आसानी के साथ ले सकते हैं। नो टेंशन ब्यूटी क्रीम, आपकी खूबसूरती का राज। मजीद मालूमात और तफसीलात के लिए इस नंबर पर राबिता करें 0311-720-5726।

0: नेटवर्क
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: आपकी जिंदगी में।
1: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, ये जज्बा है आपकी आवाज बनने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4 खुश रहने का जज्बा। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
2: گرانو ریدن کو دا امن ریڈیو ایف ایم اتاتیا اشاریہ سلور بٹاگرام دے دا وقتاسو زمونگا اسلامی نشریات آوری

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।

0: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम ट्यून किया।
1: रेडियो अमन, रेडियो अमन, रेडियो अमन, जज्बा है मोहब्बतें समेटने का, मोहब्बतें समेटने का, मालूमात की एक नई दुनिया बनाने का, एक नई दुनिया बनाने का। ये जज्बा है आपकी आवाज बन, जज्बा है आपको बाखबर रखने का, जज्बा है आपको बाखबर रखने, एक अज्म अपनों को पास लाने का, बिछड़ों को फिर से मिलाने का, एक जज्बा आपको खुश रखने का, आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें लाने का। रेडियो अमन 88.4, खुश रहने का जज्बा।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।